0: गुलाम तुम भी थे यारों, गुलाम हम भी थे। नहा के खून में आई थी फसले आजादी, मजा तो तब था कि मिलकर इलाज जहां करते, खुद अपने हाथ से तामीर गुलसितां करते। हमारे दर्द में तुम और तुम्हारे दर्द में हम शरीक होते। तो
1: You're listening to Sunny Govan 103.5 FM, sunnyg.org online.
2: Supporting local community through local talent and celebrating local music and arts.
3: Positive destinations through radio skills, education and workshops.
4: Offering training, practical support and building futures.
5: Where you want to be, meet the team at Sunny G.
6: From 103.5 FM, Govan and Glasgow for the west of Scotland. Reaching worldwide on sunnyg.org.

गुलाम तुम भी थे यारों, गुलाम हम भी थे, नहा के खून में आई थी फसले आजादी, मजा तो तब था कि मिलकर इलाज जहां करते, खुद अपने हाथ से तामीर गुलसिता करते, हमारे दर्द में तुम और तुम्हारे दर्द में हम शरीक होते।